0: हेलो हेलो
1: सॉरी
0: हेलो
1: हेलो वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम?
0: आई एम कॉलिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क.
1: व्हाई डू यू कॉल अस फ्रॉम डिस्टेंस?
0: आई वाज चेकिंग
1: आई जस्ट
0: ऑन द वेब.
1: या बट इट्स नॉट यू हु इज कॉलिंग. नो, समवन एल्स इज कॉलिंग नाउ.
0: Is maybe is you?
1: Maybe it's a signalization.